मैं चरी कठेवरे मंदिरे मैं थी सुने गजल कठे में वरे लुंगाज ए ताने को धागो खेलाऊ बंदा नौतु नई माया खेलाऊ बंदा संबंध साइनो परने हो कि सिरे में चट्टैंग झरने हो कि